0: jolly good mood today. What is the reason?
1: This is the effect of famous masala chai by Navigator's Cafe.
0: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo patties, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi, and my favorite, samosa chaat and bhel.
2: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
3: जी तुसी भी करना चाहते हो अपना खुद का रेडियो प्रोग्राम तो आज ही सानू कॉल करो 647-504-1557।
4: डाइवोर्स या कस्टडी दी लड़ाई जिंदगी दी सब तो औखी लड़ाई होंदी है क्योंकि तुसी उस शख्स नाल लड़ रहे होंदे हो जिस नाल तुहाडा घर परिवार ते तुहाडे बच्चे सांझे ने। उस वक्त कई सवाल उठते ने कि प्रॉपर्टी किस कोल जाएगी, कस्टडी किस नूं मिलेगी ते जिंदगी दी सब तो प्यारी दौलत बच्चे किस कोल रहणगे।
5: SNS लॉयर्स को इन्हां सारे सवालां दे जवाब ते तुहाडे हक ले लड़न वास्ते लियाकत है। अपने हक जानन लई या सलाह लैण लई अज ही SNS लॉयर्स नूं कॉल करो 416-655-2000।
3: टेक स्पिरिट, हजे तक भी तुसी अगर अपने सिक्योरिटी कैमरे नहीं लगवाए ता बिजनेस या रेजिडेंशियल अपने घरां लई सिक्योरिटी कैमरे रिकॉर्डिंग अते दुनिया भर दे विच किते भी कैमरे चेक करो अपने फोन दे राही। टेक स्पिरिट 905-621-4100। तुसी होम ऑटोमेशन कोई भी करवानी है, तुसी अगर घरे अपना होम थिएटर होम सिनेमा तैयार करवाना, वेरी प्रोफेशनल टीम। टेक स्पिरिट 905-621-4100 905-621-4100 ते फोन जरूर करो। SS Lawn Care ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਚੋਇਸ। ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਘਾਹ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸੋਡ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸੀਜ਼ਨਲ ਗ੍ਰਾਸ ਕਟਿੰਗ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ, ਵੀਡ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਾਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਫਲਾਵਰ ਬੈਡ ਬਣਵਾਓ ਜਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀ ਟ੍ਰਿਮਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਹੋਵੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦਾ ਕੰਮ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ 437-655-1984 437-655-1984।
6: Get ready! GTA, are you ready for the

कमाल करती। माणक साहब ही सी, मैनू नहीं लगता कि माणक साहब तो बाद कोई होर उन्हां दे लेवल तक ना पहुंच सकता है। कोशिश बहुत कर रहे ने पर मैनू लगता नहीं कि उस लेवल ते पहुंचना, उन्नी पॉपुलरिटी उन्नी प्रसिद्धि जड़ी हासिल करनी ना, वो मेरा ख्याल है कि परमात्मा ने माणक साहब दे हिस्से दे विच ही पाई सी। जिन्ना नाम उन्होंने कमा लिया, रहिंदी दुनिया तक माणक माणक जिहड़ी है ना, वो हर कोई बंदा, लोगों ने नाम तो बहुत माणक कईयां ने ला ले होए आ, पर माणक वर्गिया जिहड़ियां क्वालिटी जिहड़ियां खासियतां जिहड़ियां गायकी दी जिहड़ी बुलंदी सी ना, वो जिहड़ी वो तां आउणी होर तरीके नाल ही आउंदी, वो तां मुकद्दरां दे नाल ही आउंदी आ। सो सुन रहे हो तुसीं रेडियो प्रोग्राम सब रंग, साडा तुहाडा साथ रहेगा 11 बजे तक। ते साडे रेडियो प्रोग्राम दे जिहड़े मेन प्राउड स्पॉन्सर होने जी, ब्रम्पटन कैश एंड कैरी। ब्रम्पटन कैश एंड कैरी पूरे कैनेडा दे विच 9 वक्खरियां वक्खरियां लोकेशनस दे उपर अपनियां सेवावां दे रहे ने। तुसीं लैणी होए अपने घर दी किचन वास्ते कोई ग्रोसरी, किचन वास्ते कोई बर्तन लैणा होए, रेस्टोरेंट दे लई कोई ग्रोसरी लैणी होए, या रेस्टोरेंट दे लई कोई वड्डा बर्तन तुहानूं चाहिदा होए, डिस्पोजेबल समान तुहानूं चाहिदा होए, बल्क दे विच कोई बहुत वड्डी गैदरिंग कर रहे हो तां वी हजारां दी गिनती दे विच समान तुहानूं चाहिदा होए तां तुसीं लै सकदे हो ब्रम्पटन कैश एंड कैरी तों। घर दे विच कोई छोटा मोटा औजार वरत्या जाण वाला, इन्हां दिनां दे विच असीं बैकयार्ड दे विच या फ्रंट दे उपर छोटी मोटी बागबानी या छोटी मोटी असीं सब्जियां वगैरह लगाउणे आ, तां कोई भी औजार तुहानूं चाहीदा होए ब्रम्पटन कैश एंड कैरी तों मिल सकदा। छोटी मोटी दवाई जिहड़ियां अक्सर असीं घरां दे विच फर्स्ट एड दे तौर ते रखदे हुंदे सी, उन्हां विचों कोई भी छोटी मोटी तुहानूं दवाई चाहीदी होए तुहानूं ब्रम्पटन कैश एंड कैरी तों मिल सकदी है। कोई घर दे विच फंक्शन कर रहे हो, कोई हल्दी, कोई मेहंदी, कोई मंगणा, कोई विआह, कोई शादी, तां घर दे विच पंजाबी थीम दी तुसीं उसारी करनी है, तां पंजाबी माहौल पंजाबी सभ्याचार दे नाल रिलेटड कोई भी चीज तुहानूं चाहीदी होवे, पक्खी चाहीदी होवे, चरखा चाहीदा होवे, ढोलकी चाहीदी होवे, ढोल चाहीदा होवे, भंगड़े गिद्दे दे ड्रेस चाहीदे होण, भंगड़े गिद्दे दे मॉडल चाहीदे होण, पीढ़ियां चाहीदियां होण, घड़े चाहीदे होण, मटके चाहीदे होण, जो जो मर्जी तुहानूं जागो चाहीदी होए, जागो दे नाल ओह डंडे जिहड़े वरते जाण वाले ओह चाहीदे होण, ओह छतरियां जिहड़ियां कलरफुल छतरियां हुंदियां, कुछ भी चाहीदा होए, गुरु साहिबान दी कोई फोटोग्राफ चाहीदी होए, हिंदू धर्म नाल संबंधित किसी देवी देवते की कोई फोटोग्राफ या मूर्ति या उन्होंने संबंधित कोई पूजा समगरी की तुहानूं जरूरत होवे, ब्रम्पटन कैश एंड कैरी तो लै सकदे हो। गर्मियां दे विच कई लोगों नूं फ्रिज का पानी सूट नहीं करता, तो बड़े खूबसूरत मिट्टी के घड़े तुसीं लै सकदे हो, टूटियां लगियां हुई मिट्टी के बर्तन भी तुहानूं हर तरह के ब्रम्पटन कैश एंड कैरी तो मिल सकते हैं। सो पंजाबियों के कॉस्को के नाम नाल जाणिया जांदा 60,000 स्क्वेयर फुट के विच फैलिया होया विशाल स्टोर ब्रम्पटन कैश एंड कैरी। फोन नंबर 905-230-4800 905-230-4800। दूसरे साडे प्राउड स्पॉन्सर विलेज ऑफ इंडिया शुद्ध शाकाहारी भोजन दे विच जाणिया पहचाणिया नाम पिछले 3 दहाकियां तो। स्ट्रीट फूड इन्हां दा बहुत ही पॉपुलर है, तुसीं गोल गप्पे, टिक्कियां, भल्ले, डोसे, गर्मा गर्म देसी घ्यो दियां जलेबियां, नूडल्स, अजकल नवा सैटअप तुसीं आओ इन्हां दा देखो, विलेज ऑफ इंडिया की बैक साइड के उपर वाण के मंजे लगे हुए, स्टैंडिंग टेबल लगे हुए, लाइव म्यूजिक चलता है, उत्थे गर्मा गर्म टिक्की

आप सभी श्रोताओं का घर संसार में बहुत ही प्यारा सा स्वागत है, अभिनंदन है। सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय साईं राम, या अली मदद। और आपके लिए मौसम बहुत कमाल का चल रहा है, शामें इतनी खूबसूरत होती हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है। तो मैं उम्मीद रखती हूँ आप सभी कहीं ना कहीं वॉक करने जाते होंगे या कुछ ना कुछ समर में बाहर निकलते होंगे, थोड़ी देर के लिए ही सही, 5-10 मिनट के लिए ही सही। जैसे भी आप जरूर कोशिश करें, चाहे अपने घर के आगे ही कुर्सी में बैठें, लेकिन जरूर बाहर निकले, ठंडी हवा लें। सर्दियों में तो फिर हम अंदर ही घुसे रहते हैं। अब इसी विचार के साथ आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वाशर, ड्रायर बढ़िया लेके आना चाहते हो, और बढ़िया बैक यार्ड आपको फर्नीचर चाहिए, बढ़िया बारबेक्यू चाहिए, और आपको टीवी लेटेस्ट चाहिए, तो आपको जाना होगा टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है। दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल्फ में है। तो आप अगर उनके वेबसाइट पे जाएंगे, आपको स्पेशल्स मिल जाएंगे। अभी आपने अपनी बहन को राखी के लिए बढ़िया सा टीवी लेके देना है, पहले से ही ऑर्डर कर दो, या और कोई घर की बढ़िया गैजेट्स लेके देनी है, तो आप जाइएगा टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड में, दूसरी लोकेशन गोल्फ में, ब्रैम्पटन में, और गोल्फ में दो लोकेशन है उनकी। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट कॉम पर जाकर उनकी स्पेशल देखो, फिर अपना ऑर्डर बुक करो 905-799-0045। अगर आपको मूव होना है तो मूव होने के लिए एचको मूवर्स आपकी पूरी मदद करते हैं। एचके मूवर्स आपके लिए कनाडा भर में मूव होने में मदद करते हैं। बहुत सारी उनकी टीम्स हैं, आपके सामान को हिफाजत से पहुंचाते हैं। तो 416-524-8004 पर कॉल कीजिए, 416-524-6704 पे आप उनको कॉल कर सकते हैं। आपको खाना ऑर्डर करना है, लाइव बुकिंग करवानी है, तो न्यू इंडिया स्वीट्स रेस्टोरेंट आपके लिए क्रेडिट भी वो ब्रिटानिया पे मौजूद है, मिसिसागा में। आप उनका ऑर्डर बुक करने के लिए 905-814-1703 पर कॉल करो, 905-814-1730। न्यू इंडिया स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट पे आप उनको कॉल कर सकते हैं। अब अगर आपने किचनर वाटरलू गोल्फ में घर खरीदना है, बेचना है, नसीब थिंड को कॉल करिए, 519-546-1260। तो आशा भोसले, उन्होंने बहुत सारे गीत गाए हैं, तो आप उन्हीं का ये बढ़िया सा गीत आपको सुनाती हूँ। उम्मीद रखती हूँ कि आपको पसंद आएगा। लेट्स गो टू दिस ब्यूटीफुल।

तो एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। उम्मीद रखती हूँ कि आपको गाना पसंद आ रहा होगा, तो इसी तरह हम आपका मनोरंजन करते रहेंगे। अब अगर आप अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वाशर, ड्रायर बढ़िया क्वालिटी का लेके आना चाहते हो और साथ साथ आप बढ़िया बढ़िया टीवी लेना है आपको लेटेस्ट डिज़ाइन का, और बढ़िया आउटडोर फर्नीचर चाहिए, बारबेक्यूज चाहिए, किचन के गैजेट्स चाहिए, तो ये सारा सामान आपको टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स में मिलता है। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पर मौजूद है, दूसरी लोकेशन उनके ग्वाल्फ में है। topchoiceelectronics.com पर जाकर आप उनकी स्पेशल देखिए और फिर अपने ऑर्डर बुक करने के लिए आप उनको कॉल कर लीजिए 905-7009-05799-0045 पे आप कॉल कर सकते हैं। तो अब अगर आपने मूव होना है तो मूविंग के लिए आप HK मूवर्स को कॉल कीजिएगा। HK मूवर्स आपके लिए, उनकी बहुत सारी टीम है और आपके सामान को बड़े हिफाजत से पहुंचाते हैं। आप उनको अभी कॉल कर लीजिए 416-524-804 अपने ट्रक बुक कीजिए और आप अपनी मूविंग का प्रबंध कर लीजिए और बेफिक्र हो जाइए। मूविंग इज़ नॉट ईजी, इज़ वेरी हार्ड, पर अब आपके लिए ये सारी चिंता दूर करेंगे HK मूवर्स वाले। तो अब अगर आपने किसी किस्म की भी आपको मिठाइयाँ चाहिए तो समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री पे आपको बहुत बढ़िया मिठाइयाँ मिलती हैं, वहाँ पे जाइएगा आपको बहुत बढ़िया। आजकल समर है, आपकी पिकनिक होने वाली है, तो आप समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री पे जाइए और वहाँ पे आपको बहुत बढ़िया सारा कुछ मिठाइयाँ, खाना बहुत बढ़िया मिलेगा।

होते हैं, नौ देवियों की पूजा की जाती है, तो वो 16 जुलाई से 23 जुलाई तक थे इस साल। तो उम्मीद रखती हूँ कि आप सभी ने, जैसे भी आपकी श्रद्धा है, आपने ज़रूर मनाए होंगे। और आजकल गर्मियाँ हैं तो सभी मंदिरों में कथाएँ हो रही हैं और बहुत सारे प्रोग्राम हो रहे हैं, तो आप अपने बच्चों को ज़रूर लेके जाइएगा। और अभी 3 दिन का ये मेला होने वाला है, जुलाई 24, 25, 26, यहाँ पे मिसिसागा में जो स्क्वायर 1 का जो स्क्वायर है उनका, तो वहाँ पे 3 दिन का मेला होने वाला है, तो वहाँ पे आप ज़रूर जाइएगा, एंजॉय कीजिएगा। तो अब अगर आपने किसी किस्म की भी आपको फ्रिज, स्टोव, वाशर, ड्रायर चाहिए, तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाइए और टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स .com और उनको आप कॉल कर सकते हैं 905-799-0045 पर आप कॉल करके अपने ऑर्डर बुक कर सकते हो। तो आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर संसार। तो ये अब आपको मुकेश जी का गीत सुनाते हैं, मुकेश और लता जी के बहुत सारे अच्छे अच्छे रोमांटिक सॉन्ग्स हैं। तो हमने तो उनके उस ज़माने में 70s में यहाँ पे शो हुआ करते थे और सुभता जी उनके शो करवाया करते थे, तो उसी तरह के हमें याद है, उनकी यादें हमारे दिल में हैं। तो आइए आपको एक प्यारा सा उन्हीं का गीत सुनाते हैं। आजकल मौसम बहुत बढ़िया है, तो मौसम के ही बारे में गीत सुनाते हैं। तो लेट्स गो टू दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग। अगर आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा है तो आप ज़रूर हमें कॉल कर सकते हो 6477737604 के, हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से। तो ये जो गाना है बहुत ही रोमांटिक सा है और आपको ज़रूर पसंद आएगा। लेट्स गो टू जितेंद्र और नंदा के ऊपर ये फिल्माया गया था उस ज़माने में, और उस ज़माने की अगर आप कोरियोग्राफी देखो ब्लैक एंड वाइट में भी कमाल की आपको नज़र आती है। तो इसमें भी आपको अगर मौका मिले तो, बड़ा गांव का सीन है तो बहुत ही प्यारा सा है, धरती कहे पुकार के 1969 की फिल्म।

जी हाँ, एक बार फिर से स्वागत है। कई बार किसी से इतना प्यार हो जाता है, इतना रिलेशन हो जाता है, तो उसमें आपको ऐसा महसूस होता है कि आपका जरूर कोई बंधन है और गुप्त सा बंधन है। तो ऐसे ऐसे पेरेंट्स को अगर आप कोशिश करो तो जरूर आपको दुनिया में मिल जाते हैं ऐसे रिश्ते। तो इसी तरह हम आपका मनोरंजन करते रहेंगे, रात को 10 से 11 बजे भी आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे। अगर आपको मूव होना है तो HK मूवर्स आपकी पूरी मदद करते हैं कनाडा भर में मूव होने के लिए। उनकी बहुत सारी टीम है, तो बहुत बढ़िया आपको सर्विसेज देते हैं, आपका सामान हिफाजत से पहुंचा देते हैं। अगर आपको मूव होना है तो आप कॉल कीजिएगा, आज ही अपना ट्रक बुक कर लीजिए 416-524-804-416-524-6704 पे आप उनको कॉल कर सकते हैं, HK मूवर्स। तो अब अगर आपने किसी किस्म की भी आपको मिठाइयाँ लेनी है, लड्डू जलेबियाँ समोसे, तो आप समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री आपके लिए बहुत बढ़िया उनका सामान होता है, क्योंकि उनका टर्नओवर बहुत है, तो एकदम फ्रेश आपको सारा सामान मिलता है। तो आइए अब आपको ये प्यारा सा गीत सुनाते हैं, ये भी बड़ा सुंदर गीत है, मोहम्मद रफ़ी और लता जी के बारे में, मीना कुमारी और प्रदीप कुमार के ऊपर फिल्माया गया था। मैं कोशिश करती हूँ आपको भूले बिसरे गीत सुनाऊँ।

जी हाँ, एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। बिल्कुल सही है कि ना बीते जाए रात के हम मिलते नहीं रहे। उम्मीद रखती हूँ इसी तरह हम आपसे मिलते रहेंगे, आपका मनोरंजन करते रहेंगे, बहुत सालों से करते आ रहे हैं। अगस्त 94 में 95 में ये प्रोग्राम मैंने शुरू किया था, तो आज तक हमारी आवाज़ जो हमारे स्पॉन्सर हैं उन्हीं का ये साथ है, तो हम आगे हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। तो आइए अब आपको एक पंजाबी का गीत भी ज़रूर सुनाना चाहिए ना, क्यों आपको बिल्कुल अच्छा लगेगा। सो कैसे होता है कि कोई चाहे पास रहे चाहे दूर रहे, लेकिन प्यार में कमी नहीं होती है कई बार, क्योंकि दिल में कोई बस जाता है तो फिर वो उसको दिल से आप निकाल तो सकते नहीं। कुछ ऐसे रिश्ते ज़िंदगी में बन जाते हैं, तो उसी के बारे में गीत है। सो आपको ज़रूर पसंद आएगा। ये गाना पंजाबी का है, पुराना ब्लैक एंड वाइट के ज़माने का है, पर बहुत मेरे दिल के बड़े नज़दीक हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो आपको भी ज़रूर पसंद आएगा। मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा, आप सुन रहे हो प्रोग्राम

प्रोग्राम का समय समाप्ति पर है। मैं यहीं पे आपसे विदा लेती हूँ। नानक राम चढ़दी का तेरे पाने श्रद्धा पला है वंडरफुल डे, और शाम को 10 से 11 बजे आपकी सेवा में फिर हाजिर हो जाएंगे।

करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट

मन आनंद है जियो, सचो सचा नाओ गुण गोविंद है जियो। जीवा तेरे नाए मन आनंद है जियो, सचो सचा नाओ गुण गोविंद है जियो। गुर ज्ञान अपारा सिरजनहारा, जिन सिरजे तिन गोई, परवाना आया हुक्म पठाया फेर न सकै कोई। आपे कर विखै सिर सिर लिखै, आपे सुरत बुझाई, नानक साहिब अगम अगोचर, जीवा सच्ची नाई। तुम सर अवर न कोए, आया जायसी जियो। हुक्मे हुए निबेड़, परम चुकाए सी जियो। गुर परम चुकाए अकथ कहाए, सच मह साच समाणा, आप उपाए आप समाए, हुक्मे हुक्म पछाणा। सच्ची वड्याई गुरते पाई, तू मन अंत सखाई, नानक साहिब अवर न दूजा, नाम तेरा वड्याई। तू सच्चा सिरजनहार, अलख सिरंदिया जियो। एक साहिब दोए राह, वाद वदंदिया जियो। दोए राह चलाए हुक्म सबाए, जन्म मुआ संसारा, नाम बिना नाही को बेली, बिखला दी सिर पारा। हुक्मी आया हुक्म न बूझै, हुक्म सवारण हारा, नानक साहिब शब्द सिंजापै, सचा सिरजनहारा। भगत सोह हे दरबार, शब्द सुहाया जियो। बोले अमृत बाण, रसन रसाया जियो। रसन रसाए नाम तिसाए,
ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਵਿਕਾਣੇ ਪਾਰਸ ਪਰਸੈ ਪਾਰਸ ਹੋਏ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਮਨ ਭਾਣੇ ਅਮਰਾ ਪਦ ਪਾਇਆ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਵਿਰਲਾ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰੀ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਸੋਹਨ ਦਰ ਸਾਚੈ ਸਾਚੇ ਕੇ ਵਾਪਾਰੀ ਭੂਖ ਪਿਆਸੋ ਆਥ ਕਿਉਂ ਦਰ ਜਾਏ ਸਾ ਜੀਓ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁੱਛੋ ਜਾਏ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸਾ ਜੀਓ ਸਚ ਨਾਮ ਧਿਆਈ ਸਾਚ ਚਵਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚ ਪਛਾਣਾ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਦਇਆਲ ਨਿਰੰਜਨ ਅਨਦਿਨ ਨਾਮ ਵਖਾਣਾ ਕਰਨੀ ਕਾਰ ਧੁਰੋਂ ਫੁਰਮਾਈ ਆਪ ਮੁਆ ਮਨ ਮਾਰੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਹਾਰਸ ਮੀਠਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਾਮ ਨਿਵਾਰੀ ਕਰਨੀ ਕਾਰ ਧੁਰੋਂ ਫੁਰਮਾਈ ਆਪ ਮੁਆ ਮਨ ਮਾਰੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ

तेरी नाम तेरा कुछ नहीं जो मेरा, श्वास भी तेरे एहसास भी तेरा, एक तो ही सतगुरु मेरा। मैं हाँ संतोष कौर एंड थोड़े सब का स्वागत कर दिया अपने शो रेडियो आवाज़ ते, ते असी थोड़े नाल एक बजे तक इंज ही जुड़े रहांगे ते तुसी सारे साडे नाल साडा शो इंजॉय करो।

0: Drive, Brampton. Major intersection, Steeles and Kennedy, 90545-12600.
1: पापा पापा सुनते क्यों नहीं, चॉकलेट लेनी है।
2: अजी सुनते हो, कहाँ गुम हो?
3: अरे महेश अभी तक ऑफिस नहीं आए, पता नहीं मीटिंग थी। हेलो हेलो हेलो।
4: जब मैं रेडियो आवाज सुनता हूँ तब तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। बम्प टू बम्प ट्रैफिक एंड बम्प टू बम्प कॉल्स, ऐसा ही होता है जब आप सुनते हैं हर सुबह 9 to 10 मंडे टू फ्राइडे एंड सैटरडे 11 to 1 रेडियो आवाज।

0: आप बैकग्राउंड क्या रहा आपका?
1: के पहले 2003 पास आउट।
0: अच्छा, मेरे को एक कॉल आया, उन्होंने बोला कि हमने एड शुरू करना है
1: जी,
0: हम केरला का ही मसाज करते हैं ना, ऐसे कुछ है ना। तो मैं मतलब उन्होंने कहा कि नहीं हम नहीं कर सकते, ब्रिजी सर नाल कर रहे हैं।
1: थैंक यू।
0: तो ब्रिजी भी इन्हें साला तो कर रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं, मैं कहे मदद भी कर रहे हैं, नाल अपना घर भी चला रहे हैं। सो मैं ब्रिजी, आपके पास कौन कौन सी जड़ी बूटियां हैं जिनके आप ऑयल को, जिनके आप जो पेस्ट को ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं?
1: जी, हमारे साथ अलग अलग ऑयल है, महानारायण तैलम, क्षीरबल, धन्वंतरम, मुरीवेण्ण, पूरा ऑल काइंड्स ऑफ कर्पूर आदि, ये सब है। हाँ, कर्पूर आदि।
0: कर्पूर आदि का क्या काम होता है?
1: इट्स फॉर द पेन के लिए, सब पेन के लिए जी।
0: अच्छा।
1: हाँ, डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर के लिए डिफरेंट ऑयल है,
0: डिफरेंट ऑयल।
1: हाँ,
0: सो ये पेन खत्म करते हैं। सो जीना दे किसी दे मोड़े च तौण च कीला हैगा गर्दन च, संतोष जी?
2: हाँ जी,
0: संतोष जी का रेडियो सुन रहे हैं। अच्छा, सो जीना दे तौण च कीला, गर्दन च कीला फसया होया, जिन्हां दे माइग्रेन वाला कीला कहना
2: जी, बिल्कुल
0: आकड़ा वाला नहीं।
2: हाँ जी।
0: सो जिन्हां दे दर्द ने सिर दे विच, माइग्रेन आ, हाफ पेन है, नहीं बंद होंदियां तुहाडियां इह दर्द, तुसीं ब्रिजी कोल जरूर पहुंचना। बॉडी नूं ब्लड सर्कुलेशन दा एक सिस्टम दो और ब्रिजी नूं कॉन्टैक्ट करो। ब्रिजी नंबर किन्ना?
1: 6476191369।
0: कितनी अपॉइंटमेंट्स है आपके पास?
1: लिमिटेड अपॉइंटमेंट्स आर अवेलेबल टुडे एंड टुमारो, आज और कल भी है,
0: आज और कल,
1: लेडी एंड जेंट,
0: लेडी एंड
1: दोनों के लिए।
0: औरतों के लिए लागे ना कुल दो कुड़ियां कम कर दिया ने, बहुत वधिया ने, वो भी केरला तो होम्योपैथिक, सॉरी
1: आयुर्वेदिक
0: डॉक्टर है
2: जी।
0: ते दूसरा ब्रिजी भी तुहानू जिहड़ा योगा ट्रीटमेंट्स और शिरोधारा
2: मेडिटेशन,
1: मेडिटेशन
0: और भी कर दंदा है, सारे जिन्हें भी तुसी सुनते पे हो, अपने शरीर नूं तोहफा दो, अपनी बॉडी नूं तोहफा दो, अपने आप नूं प्यार करो, ते ब्रिजी नूं प्यार करो
1: जी।
0: ब्रिजी नंबर बोल दीजिए।
1: हरिदा केरला आयुर्वेद एंड योगा सेंटर, 6476191369,
0: 6476191369 ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਵਾ ਲਓ।

0: सो मैंने शुभानु है हुसना दे माल को सताया ना कर। शुभानु जी कैसे हैं आप?
1: बिल्कुल बढ़िया अमन भाई, आप बताएं।
0: बस बढ़िया शुभानु जी, पहले सबसे आपका नंबर पंजाबी में बोल दो।
1: 416-206-3200
0: शिवानु पंजाबी मुंडा तुहाडा हाजिर है। शिवानु सब तो वधिया लगता है मैनू थोड़े काम करन दा स्टाइल।
1: थैंक यू।
0: नंबर टू थोड़े दोस्तां दूसरे नाल कम्युनिकेशन
1: जी।
0: नंबर तीन मैनू थोड़ी डिलीवरी बड़ी अच्छी लगती है
1: जी।
0: ऑन वर्ड्स ऑन टाइम जो कह दिता उस समय दे विच कर दिता। तो शिवानु एक ऐसा नाम है जो अपने जो किते नू इश्क करदा प्यार करदा पैशनेट अबाउट हिज इंडस्ट्री ते कुछ होर नहीं करदा विंडोज ही लाउंदा विंडोज एंड डोरस। जे थोड़ा दरवाजा भन के कोई अंदर आ जाए शिवानु कहिंदा मैं पैसे वापस दे दूंगा जे मेरा दरवाजे दे जोड़ टुट जाण बुला के तड़वा लिओ किसी तो। नंबर टू जे साडी विंडो जिहड़ी स्पैशल ग्लास वाली सी लाउंदे आ ग्राउंड फ्लोर दे उत्ते ओनू कोई 15 या 20 मिनट तो पहला तोड़ लवे 15 to 20 मिनट लगनगे तोड़न नू तुसी 911 डायल कर दो 5 मिनट च सर्विस आ जांदी तुहाडे दरवाजे ते 15 to 20 मिनट पहला तोड़ के कोई अंदर बढ़ जाए घर च तो असी पैसे वापस दे देवांगे। साढ़े जिहड़े लॉक ने जर्मन टैक्नोलॉजी दुनिया की सब तो बेहतरीन टैक्नोलॉजी चोर का गोडा टुट जूगा थोड़ा दरवाज़ा नहीं टुटूगा एवें नहीं असी स्लोगन बनाए। राइट विंडो फोर्स कंपनी का नाम है जिहड़ी कहती है कि पैसे नहीं है असी बैठे हाँ तुहाडी सेवा दे विच। राइट विंडो फोर्स जिहड़ी कहती है कि जिन्ना बिल तुसी एनर्जी ते एक्सट्रा पे कर रहे हो एसी का जोर लग रहा बाहरली गर्मी अंदर उन्होंने रुकती नहीं पई तो सर्दियों च ठंड अंदर धड़ा धड़ बढ़ रही है तो फरनस बंद नहीं हो रही उन्ने पैसों की किश्त के उत्ते असी तुहाडी मंथली इंस्टॉलमेंट बना दें तो तुसी कुछ क पैसे पे करके अपने विंडो इंस्टॉल कर लें। शिवानु अब आपके लिए बोलने को क्या बच गया ये बताओ।
1: मेरे पास कुछ नहीं अमन भाई, तुमने सारा कुछ बोल दिया।
0: हाँ शिवानु अभी रुक जाओ अभी रुक जाओ। एक ऐसी कंपनी है थोड़े घरे ना कागज पेन लेके विंडोज की एस्टीमेट देने नहीं आते थोड़े घरे विंडो लेके आते हैं जी च टैंपरेचर ग्लास क्वालिटी लॉक्स तो वह विंडो में चुकवा के देखते हैं हाथ ना चक के देखो मेड इन चाइना माल नहीं असी ठोक के जाना उत्ते स्टिकर लगे ने एनर्जी दे लाइफ टाइम वारंटी विंडो तुसी लाओ इंजॉय तुहाडे बच्चे करनगे 25 साल मिनिमम गारंटी दे नाल प्रोडक्ट सैल करदी है कंपनी राइट विंडो फोर्स। शिवानु जी नंबर किन्ना अपना?
1: 416-206-3200।
0: वो कहिंदा कि शाका तुम मुझसे भाग नहीं सकते पाताल तक भी भाज लो तो भी राका तुम्हारे पीछे आएगा तुसी किसी भी शहर चो कॉल कर दो तुसी राइट विंडो फिट तो भज नहीं सकते राइट विंडो फिट तुहाडे शहर च आके तुहानू एस्टीमेट दे जाऊगा किसी भी शहर चो कॉल करो पेमेंट प्लान लवो सैटिस्फैक्शन लवो विंडो एक ऐसी चीज़ें लाने तो बाद बंदे ने फोन चकना बंद कर दिता थोड़ी लाइफ हैल है 20,000, 15,000, 10,000 खर्चन तो बाद 416-206-3200 नंबर है राइट विंडो फोर्स। शिवानु जी जाने से पहले कुछ और आप भी बोल दीजिए ना प्लीज।
1: सर थैंक यू सो नाइस ऑफ यू, आज तो आपने पूरा मतलब बढ़िया मेरा ऐड कर दिया। बट जो आपने बात बोली है तो सर आपकी भी एक इमेज है तो हम उसको साथ में कैरी करके चलते हैं और लोग बहुत विश्वास रखते हैं कि अमन भाई ने बोला है तो वो बात सही होगी और हम उस पर पूरे खड़े उतरते हैं।
0: तो मैं भी कोशिश की थी शिवानु, मैं ऐड आई सी हूं पीछे वो बंदे ने किसी तो पैसे ले काम नहीं किया मैं कभी किसी का रेडियो से ना नहीं बोलता शिवानु कभी जिंदगी दे विच
1: जी
0: ये बहुत अच्छा रूल है पर्सनल चीजा रेडियो ते नहीं लेके आनी है
1: बिल्कुल।
0: हाँ कोई किसी ने नुकसान कर रहा है मैं ऐड बिल्कुल सच्ची मैं कहना मैं नहीं कहता मेरे को बहुत कम आया हाँ मैं ऐड रोक देना एटलीस्ट मेरे करके किसी का नुकसान ना हो जाए मैं भी उन्ना ही रिस्पोंसिबल है जिन्ना दूजा बंदा जो काम गलत करके गया पर मैं हरेक नु मोनिटर नहीं कर सकता इन्ना कह सकता किन्ने साल के शिवानु तुम मेरे ऐड कर दे
1: ऑलमोस्ट 3 साल हो जाएंगे सर
0: 3 साल हो गए हजे भी वेयर हाउस च मेरी ये विंडोज पईया ने जिहड़ियां मैं इन्हां तों बनवाईयां ने किसी ने आके चेक करनी आके चेक कर लियो 16,000-17,000 ਦੇ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਣਵਾਈਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਦੀ ਪਈ ਉਹ ਚਲਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਿਵਾਨੂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਆ 416-206-3200 416-206-3200 ਰਾਈਟ ਵਿੰਡੋ ਫੋਰਸ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਓ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਚੇਂਜ ਕਰਾਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।

0: 20% डिस्काउंट अद्धे प्राइस है, ब्लैक फ्राइडे प्राइसिस इन जुलाई सिर्फ 499 च। तद भी तुसी आना जी 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट जस्ट ईस्ट ऑफ चिंकूजी ऑन बोवेड है, ब्रैम्पटन अपलायंसिस वन वर्ड है, brampton appliances.com यह साड़ी वैबसाइट है, 905-450-2828 905-450-2828 जी
1: 905-450-2828। सुल्तान जी क्विकली काउंटर टॉप अपलायंस बारे भी दस दो जी, केड़े केड़े तुहाडे कोल हैगे ने ते की प्राइस है उन्होंने।
0: काउंटर टॉप जी साड़े कोल माइक्रोवेव है पैनासोनिक दा स्टेनलेस स्टील दा जेड़ा के $300 आला अद्धी प्राइस ते $149 दा मिल जाएगा। काउंटर टॉप जी साड़े कोल एयर फ्रायर है निंजा कंपनी दा $400 आला 199 च मिलेगा। साड़े कोल निंजा ब्रांड दा जेड़ा एस टाइम जूसर अवेलेबल है जेदे च दोनों अटैचमेंट आउंदियां है, वन विद पल्प वन विदाउट पल्प। जेड़े भी तुसी विदाउट पल्प जूस लेना चाहते हो तो तुसी विदाउट पल्प वाली अटैचमेंट लगा सकते हो, विद पल्प लेना चाहते हो तो विद पल्प वाली अटैचमेंट लगा सकते हो। निंजा कंपनी का जूसर $400 वाला अद्धी प्राइस से 199 का असी दे रहे हैं जी। तो जेड़े कस्टमर लेना चाहते स्टोन बेक्ड पिज्जा यह भी काउंटर टॉप माइक्रोवेव की तरह ही तुसी रखना है तो 3 मिनट च तुहाडा पिज्जा तैयार हो जाना है। ਇਹਦੇ ਚ ਸਟੋਨ ਬੇਕਡ ਪਲੇਟ ਇੰਕਲੂਡਿਡ ਹੈ, ਏਅਰ ਫਰਾਇਰ ਬਿਲਟ ਇਨ ਹੈ, ਸਟੋਨ ਬੇਕਡ ਪੀਜ਼ਾ 3 ਮਿੰਟ ਚ ਰੈਡੀ ਹੋਏਗਾ ਗਰੰਟਿਡ, ਔਰ ਇਹ ਲੇਟੈਸਟ ਏਅਰ ਫਰਾਇਰ ਤੇ AI ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ
2: ਹਾਂਜੀ
0: ਸਟੋਨ ਬੇਕਡ ਪੀਜ਼ਾ $500 ਵਾਲਾ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਅੱਧੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ $249 ਚ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਨ ਬੇਕਡ ਪੀਜ਼ਾ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਬੁਵੇਡ ਐਂਡ ਚੰਕੂਜ਼ੀ ਤੇ 905-450-2828 ਨੰਬਰ ਹੈ, 905-450-2828 ਜੀ।
1: ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੁਲਤਾਨ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ,
0: ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।

आदाब नमस्कार प्यार सत्कार दिनाल सत श्री अकाल एंड अ वेरी गुड इवनिंग। वापस आ गए हैं जी शनिवार की शाम की महफल दे विच एक बार फिर तो तुसी ठीरन कर चुके हो थोड़ा अपना प्रोग्राम रेडियो अंदाज थोड़ी अपनी होस्ट परम दे नाल। मेरे वालों साडे सारे लिसनर्स नूं सारे परिवारां नूं बड़े अदब सत्कार दिनाल सत श्री अकाल बहुत सारा प्यार ढेर सारा सत्कार वेलकम जी आयनों खुश आमदीद एंड स्वागतम।

धड़कते दिलों और सुनते कानों को दानिश बुखारी का मोहब्बत भरा सलाम। आज फिर आपके दिलों पर दस्तक देने की इजाजत चाहता हूं, ताकि आपको आह के साथ वाह भी कहने के लिए अपनी पेशकारी के जरिए आपको मुतासिर कर सकूं। तो चलते हैं शेर व शायरी की अजीब दुनिया में, अजीब मुख्तलिफ रंगों में, जिसे आपकी मोहब्बत ने नाम दिया है कहकशां का। राज जो कुछ भी है इशारों में बता भी देना, राज जो कुछ भी है इशारों में बता भी देना, हाथ जब उससे मिलाना तो थोड़ा दबा भी देना। वैसे इस खत में कोई बात नहीं है, वैसे इस खत में कोई बात नहीं है, फिर भी एहतियातन इसे पढ़ लो, बाद में इसे जला भी देना। वैसे तो नशा बुरी चीज है, पर दानिश से शेर सुनना है तो थोड़ी पिला भी देना। बात पीने की चली है तो कहते हैं कि शायर दीवाने और रिंदों की सोच अजीब सी होती है, या यूं कहिए कि एक जैसी होती है। हाँ, रिंद जब पीता है तो फिर खुद के करीब होता है। तो आइए सुनते हैं कुछ ऐसी ही गजल, गुलुकार है जगजीत।

सच्ची झूठी बातें दिल की चेहरा सब बता देता है। सच्ची झूठी बातें दिल की चेहरा सब बता देता है। नाम तेरा है चंदन जैसा, दिल मेरा महका देता है। खारों के साए में भी देखो वो फूल खिला देता है। ख्वाबों में वो जब भी आए सोए दर्द जगा देता है। ख्वाबों में वो जब भी आए सोए दर्द जगा देता है। चांद बड़ा है जालिम दानिश, उसकी याद दिला देता है। समीन चांद को देखना किसे पसंद नहीं। चांद भी एक महबूब की तरह होता है, जिसको देखना तो मुमकिन है मगर पाना उतना ही नामुमकिन। तो बहुत ही खूबसूरत गजल आपकी नजर करना चाहता हूँ, जिसे आवाज दी है आशा भोसले ने।

0: expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM
1: 530. अफोर्डेबल पैकेज लई अज ही कॉल करो सम्राग सिद्धू होरां नूं 416-457-3381 416-457-3381 जां तजिंदर सिंह सिद्धू दे नाल कॉल करो 416-725-2551 416-725-2551 देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो पिछले 30 वर्षां तों सबडे जदीक तुहाडे अंग संग चलो एएम 530 दोस्तों देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो चलो एएम 530 जिन्ने भी प्रोग्राम आउंदे ने उन्हां नूं सुनण वास्ते जां देश प्रदेश नूं लाइव देखण वास्ते लॉग इन करो साडी वेबसाइट नूं www.deshpradeshradio.com या www.deshpradeshtv.com लाइव सुनना चाहुंदे लाइव ते क्लिक कर लो जे वाच करना चाहुंदे आ तां ओह ते क्लिक करो जां फिर अपने IPTV बॉक्स दे उत्ते पंजाबी सैक्शन क्लिक करो ओहदे उत्ते जाके देश प्रदेश टीवी नूं क्लिक करो ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ 24/7